यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

करते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

0: श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि
1: श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि
0: श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि
1: श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि
0: श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि।

0: స్వమే రామచంద్రోదయాలుర్
1: సర్వస్వమే రామచంద్రోదయాలుర్
0: నాణ్యం జానే నైవ జానే న జానే
1: నాణ్యం జానే నైవ జానే న జానే।
2: तो इस सप्ताह में हमने श्लोक संख्या 23 से 30 तक के श्लोक बोले, इनका अभ्यास करेंगे और अगले सप्ताह में अगले वाले श्लोक बोलेंगे। धन्यवाद। आज के अभ्यास में हमने कई विनोद सुने, वो विनोद भी संस्कृत में थे और आपने समझ भी लिए, मजा आया ही होगा। तो आप भी ये विनोद अपने दोस्तों को बताइए, उनको कार्यक्रम में बुलाइए। उनके साथ जब बातें करते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा संस्कृत में ही बोलिए, तो वो भी जरूर संस्कृत सीख लेंगे और आपको संस्कृत का अभ्यास करने के लिए कंपनी मिल जाएगी। आज का प्रश्न याद है ना? प्रश्न है, चायम अस्ति किम्? उत्तर जरूर भेजिए। कार्यक्रमम समापयामः। दुर्जनः सज्जनो भूयात्।

0: भक्तिबाई सकाळमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे. केली बनू धोनी 90.4 FM वरती तुम्ही ट्यून इन आहात आणि आता आपण आध्यात्मिक विचार ऐकू.
1: कार्य कुशलता का महत्व. दुनिया में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो एक साथ अनेक काम बड़े फुर्ती और खूबी के साथ कर लेते हैं. वे लगन और मेहनत से कर्म को कला का रूप देते हैं और बड़े से बड़ा कठिन से कठिन काम भी चुटकी में कर लेते हैं. वास्तव में ये बड़ी दुर्लभ विशेषता है और जो कार्य कुशलता कहलाती है. चुनौतियों भरे युग में इस गुण के बलबूते व्यक्ति स्पर्धा के तेज बहाव में टिक सकता है, क्योंकि कार्य कुशलता वो अद्भुत दिव्य यंत्र है जो कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ कार्यकर्ता का सम्मान भी बढ़ा देता है. कार्य कुशलता अर्थात किसी भी काम को सहजता से अच्छे से अच्छे ढंग से करते करते उनमें निपुण या प्रवीण बन जाना. कम समय में कार्य को बेहतर से बेहतर रूप से कर उत्तम परिणाम पाना भी कार्य कुशलता है. ये वो जादुई हथियार है जिससे घंटों का काम मिनटों में निपटाया जा सकता है. कार्य कुशल व्यक्ति एक साथ अनेकों काम बड़े आसानी और सहजता से कर लेता है. वो बड़े से बड़ी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाता है और काम के बोझ को बढ़ाता नहीं, लेकिन काम को चुटकी में कर सदा हल्का रहता है. इसी कारण कार्य को मौज और आनंद पाने का जरिया बना लेता है, जिससे प्रतिभा का भी अद्भुत रूप से विकास होता है. ब्रह्मा कुमारी के विशाल संगठन की द्वितीय संचालिका डॉक्टर दादी प्रकाश मणि जी कार्य कुशलता का बेजोड़ उदाहरण थी. उन्होंने अपनी विलक्षण कार्यशैली के बलबूते ज्ञान का दिव्य प्रकाश 130 देशों में फैला दिया. किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कार्यकुशल बनना बेहद जरूरी है. इसके लिए कार्य को बार बार ध्यान पूर्वक दृढ़ता और लगन से करते रहे, जिससे काम की बारीकियां समझ में आएगी, कमियां और खामियां निकलती जाएगी और समय बच जाएगा. बार बार का अभ्यास कम समय में अच्छे परिणाम दिलाएगा. अतः कार्य कुशलता को अपनाइए और बहुमुखी प्रतिभान बनिए. ऐसी हमारी आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं.

0: रेणुधुनी 90.4 एफएम केएलई गनसूबे आप ट्यून है और अभी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज।
1: गुतरश विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रियसिस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पहुंचने पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और रूस के बीच लंबे समय से विशेष रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मजबूत और बहुआयामी संबंध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की भी संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: ब्रिक्स समूह का गठन सितंबर 2006 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हुई ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर हुआ था। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया। वहीं सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में आयोजित ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ ब्रिक का विस्तार हुआ और इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। दक्षिण अफ्रीका ने अप्रैल 2011 में चीन के सान्या में आयोजित तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लिया। जनवरी 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के पूर्ण सदस्य बनने के साथ ब्रिक्स का और विस्तार हुआ। भारत ने इस वर्ष 1 जनवरी को ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली। यह चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले भारत ने 2012, 2016 और 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ब्रिक्स व्यापार मंच 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। एक दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के 1000 से अधिक कारोबारी, व्यापार मंत्री, वित्तीय क्षेत्र के नेता, वैश्विक निवेशक और उद्योग जगत के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। इसका आयोजन ब्रिक्स व्यापार परिषद द्वारा फिक्की, सीआईआई और एसोचैम के सहयोग से किया जा रहा है। ये सम्मेलन 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित होने वाला प्रमुख कारोबारी कार्यक्रम है। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस इनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सामान्य रूप से चलती रहेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान लोगों के लिए बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि शनिवार को राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं किया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज से दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति सिलवासा में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राजकीय महाविद्यालय में सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे। वे सिलवासा में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर और नमो आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान सहित प्रमुख संस्थानों का भी दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति दमन में नमो अस्पताल भी जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना बेहद जरूरी है।
3: अब सभी भूमि के रिकॉर्ड डिजिटाइज किए जा रहे हैं और अब ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया से कोई भी उनको आसानी से प्राप्त कर सकता है। रजिस्ट्रार जो ऑफिस थे उनको भी पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां नागरिकों को बैठने का स्थान होगा, लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, आसानी से पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा वो कहीं से भी अपने रिकॉर्ड्स को प्राप्त कर सकेंगे।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूखा प्रभावित इलाकों में खेती को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, बेहतर नीतियों और बाजार सहयोग के साथ मिलकर काम करने की जरूरत पर बल दिया है। नई दिल्ली में ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि उचित वैज्ञानिक उपायों, नीतियों और बाजार सहयोग से सूखे क्षेत्रों को भारत के लिए ताकत का स्रोत बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कृषि व्यवस्था में बदलाव का मुख्य उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि किसानों की आजीविका और समृद्धि में सुधार होना चाहिए।
3: हमें यह तय करना होगा कि 2047 तक ड्राई लैंड में पानी की उत्पादकता कितनी बढ़ानी है। मिट्टी का स्वास्थ्य कितना सुधारना है, दलहन और तिलहन का उत्पादन कैसे बढ़े, आयात निर्भरता भी घटाना है, किसान की आय बढ़ाना है और जलवायु सहनशीलता को भी बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का सातवां संस्करण आज मुंबई में संपन्न हो रहा है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: चार दिवसीय ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों ने भाग लिया। सम्मेलन में फिनटेक के भविष्य पर व्यापक चर्चा हो रही है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करेंगे। कल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे, यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और एसबीआई के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित सत्रों को संबोधित किया था। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
7: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि का एक प्रमुख आधार बताया है। यह बयान चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की 7.8% की वृद्धि के बाद आया है। मुद्रा कोष के संचार विभाग के निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसकी मुख्य वजह सेवाओं और निर्यात में हुई बढ़ोतरी है। ट्रंप प्रशासन ने H-1B कर्मचारियों और कई अन्य रोजगार आधारित वीजा धारकों को नौकरी जाने के बाद भी अमेरिका में 60 दिन रहने की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। गृह सुरक्षा विभाग का ये प्रस्ताव आज फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित होगा। एक रिपोर्ट।
8: इस बदलाव के बाद नौकरी जाने पर नई नौकरी तलाशने या वीजा की दूसरी व्यवस्था करने के लिए मिलने वाला समय काफी कम हो सकता है। ये प्रस्ताव E1, E2, E3, H1B, H1B1, L1, O1 और TN जैसी वीजा श्रेणियों और उनके आश्रितों पर लागू होगा। अगर ये प्रस्ताव अंतिम रूप लेता है तो लोगों की नौकरी या वीजा से जुड़ी पात्र गतिविधि समाप्त होने के बाद उन्हें तुरंत अमेरिका छोड़ना होगा या उन्हें वहां रहने के लिए कोई दूसरी कानूनी अनुमति लेनी होगी। विभाग के अनुसार प्रस्ताव का उद्देश्य पहले की व्यवस्था को बहाल करना है। इसके तहत प्रायोजक नियोक्ता की नौकरी खत्म होते ही कर्मचारी को अमेरिका छोड़ना होता था। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 की अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अंग्रेजी और वाणिज्य की परीक्षा 9 सितंबर को जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा कल आयोजित की गई थी। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। भारत के 150 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश 109 रन ही बना सकी। शेफाली वर्मा को 64 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। केरलम के कई हिस्सों में आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पथनम थिट्टा, कोट्टायम, एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। पथनम थिट्टा, एर्नाकुलम, इडुक्की और पलक्कड़ जिलों में कल भी येलो अलर्ट जारी रहेगा। इस बीच कल रात 11 बजे से केरलम तट पर ऊंची लहरों के कारण तटीय कटाव की आशंका को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी दिन के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कल तक उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली गिरने, तेज हवाएं चलने, बिजली कड़कने और तूफान का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण सहायता शुरू करने को मंजूरी दी है। इसके तहत दिल्ली सरकार के खेल केंद्रों और स्टेडियम में नियमित प्रशिक्षण लेने वाले पात्र खिलाड़ियों को हर महीने 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
9: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
10: धन्यवाद फरहत। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए विदेशी मेहमानों का राजधानी दिल्ली में आगमन और रोशनी से जगमगाता भारत मंडपम आज सभी समाचार पत्रों में है। हिंदुस्तान लिखता है ब्रिक्स के लिए आज से दिल्ली किले में तब्दील, पुतिन मोदी की मुलाकात आज। राजस्थान पत्रिका ने प्रधानमंत्री मोदी का चित्र साझा करते हुए लिखा है बढ़ता दायरा, बदलता विश्व, अक्षर से महाशक्ति बनने का सफर, ग्लोबल पावर का नया ध्रुव ब्रिक्स। अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत सुरक्षित और सतत अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। जनसत्ता की खबर है, लोकसत्य लिखता है प्रधानमंत्री मोदी का अंतरिक्ष में सहयोग को प्राथमिकता देने का आह्वान। अगस्त में बाजार 2% गिरा, फिर भी रिकॉर्ड 32,000 करोड़ SIP। दैनिक भास्कर ने यह खबर आंकड़ों सहित प्रकाशित की है। शहरों से ज्यादा गांवों में बिक रहे दोपहिया, 55% पहुंची हिस्सेदारी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में छोटी बाइक पहली पसंद, वहीं महाराष्ट्र और बिहार में बड़े इंजन पर जोर, दैनिक भास्कर के बिजनेस पन्ने की खबर है। दैनिक जागरण ने श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कश्मीरी कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां देने का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है जन्नते कश्मीर में 4 दिन तक चला बॉलीवुड के दिग्गजों का मेला, बॉलीवुड का वादा, कश्मीर को फिर बनाएंगे फिल्मों की जन्नत।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में 7.8% की वृद्धि के बाद भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की दोबारा हुई परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: आकाशवाणी 90.4 FM वेणुधुनि KLE कंसू पे आप ट्यून है और अब तक हम सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज। आप सुनते रहे वेणुधुनि 90.4 FM KLE कंसू।
11: ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ದೇವಾಲಯದ ಆಭರಣಗಳ ಭವ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಅಪರೂಪದ ಆಂಟಿಕ್ ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ, ಆಭರಣಗಳ ತಯಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೇಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 30%, ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ. ದಿನಾಂಕ September 9-12 September 2026 ಮಾತ್ರ. ಸ್ಥಳ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಮಹಂತೇಶ್ ನಗರ, ಬೆಳಗಾವಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9448424 2096 8 ಹಾಗೂ 9035275501.
12: ಕೇಳಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಿರುನಗರ್ ಬೆಳಗಾವ್.
13: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೊಂತ್ಯಾ ಈ ಪ್ರಕಾರಚ ಅಸೋ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉಪಚಾರ ಏಕಾಚ ಛತಾಖಲಿ ಭೇಟತೆ.
12: ಪ್ರಥಮಸ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಳಗಾವ್ ಇತೆ ತಜ್ಞಾನಿ ಅನುಭವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಹಿತ ಸುಸಜ್ಜ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೇಳಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್.
13: ಕೇಳಿಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅನಿ MRC ಚಾ ಪಾಟಿ ಮಗೆ ನೆಹರುನಗರ್ ಬೆಳಗಾವ್ ಇತೆ.
12: ತುಮ್ಚಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಟಿ ನವೀನ ಆಶಿಸಾ ಕಿರಣ್ ಕೇಳಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್.
13: ಮಿಳನಾರ್ಯ ಸುವಿಧಾ, ಹೈಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಟೀಮ್, ಕೆಮೊಥೆರಪಿ, ಹೆಮಟೋ ಆನ್ಕಾಲಜಿ, ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್,
12: ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ, ಪಿಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ऑन्कोलॉजी, ऍडव्हान्स रेडिओथेरपी आणि यासोबत सर्व प्रकारच्या कॅन्सरवरती उपचार.
13: आमचा पत्ता केलीस डॉक्टर प्रभाकर कोरे हॉस्पिटल आणि MRC च्या पाठीमागे केली कॅन्सर हॉस्पिटल, नेहरू नगर, बेळगाव येथे.
12: फोन नंबर 08312552500 आणि 2473777.
13: मोबाईल नंबर 6360712326 किंवा टोल फ्री नंबर 1099.
12: आजच भेट द्या केली कॅन्सर हॉस्पिटल, बेळगाव येथे.

0: He expresses hope for positive discussions with aspiration for global welfare as world leaders gather in New Delhi for BRICS summit commencing tomorrow. Prime Minister Modi to hold bilateral talks with Russian President Vladimir Putin and Iranian President Masoud Pezeshkian today. BRICS Business Forum begins in national capital. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar calls for greater resilience, sustainability and cooperation amid rising global uncertainty as BRICS marks 20 years. India reiterates unwavering resolve to combat terrorism on 25th anniversary of horrific 9/11 attacks in the US. In Men's Junior Asia Cup hockey, India to take on Malaysia in semi-final at Mochi in China this afternoon. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता।
2: FM वेणुधोनी के LE गणेश पे आप ट्यून इन है और अभी हम ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज सुन रहे थे। केली संगीत कट्टा ये शो शुरू हो रहा है जिसमें खूबसूरत से गाने आपके लिए सेट किए हैं। एंजॉय करना और सुनते रहना वेणु धोनी 90.4 FM KLE गणेश।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे वेणु धोनी 90.4 एफएम केएलई कनसू। भाषा संगम में मनीषा आपका स्वागत करती है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ जो कि जनरल न्यूट्रिशन है। दोस्तों, हम जो खाते हैं, हमारे प्लेट में जो खाना रहता है वो कितना हेल्दी है हमें पता नहीं रहता, जबकि दिन भर में हम काफी चीजें खाते रहते हैं, बट हेल्थ के लिए कौन सा अच्छा है वो भी हम जानते नहीं है। तो इसी के बारे में हमें ये सभी बातें समझाने के लिए मेरे स्टूडियो में मौजूद है सुप्रजा यस, न्यूट्रिशनिस्ट एंड होलिस्टिक हेल्थ कोच है। उसी के साथ साथ वो ओन योर हेल्थ की फाउंडर भी है। मैडम वेणुधुनी के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच मनीषा जी।
0: आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक्चुअली डेली रूटीन में हमें काफी हम खाते रहते हैं, कुछ अलग अलग चीजें ट्राई करते रहते हैं, बट कौन सी चीज से या फिर क्या हम खाते हैं उससे हमें कितने हेल्दी बेनिफिट्स मिलते हैं उसके बारे में हम जानते नहीं है। हालांकि सब लोग बोलते हैं कि आपको प्रोटीन ज्यादा लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट थोड़े कम करने चाहिए, बट वो कौन से फल में रहे या फिर वेजिटेबल में रहे, वो कौन से इसमें हमें क्या क्या मिलता है वो ज्यादातर लोगों को पता नहीं रहता। तो ओवरऑल हम जनरल न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। तो जनरल न्यूट्रिशन मीन्स क्या रहता है?
1: तो जैसे आपने बोला, न्यूट्रिशन जो है वो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और बहुत डीप है, पर लोगों को यही लगता है कि न्यूट्रिशन मतलब प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, कि कम कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, ज्यादा प्रोटीन खाना चाहिए, इतना ही लोगों को समझ में आता है। और ये इसके लिए भी होता है क्योंकि हम इतना एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं कि लो कार्ब्स मतलब कम कार्ब्स, हाई प्रोटीन, लो फैट या कीटो डाइट या ये वो, मतलब अलग अलग अलग अलग तरीके का ना इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है इन चीजों के बारे में। बट एक्चुअली जो न्यूट्रिशन की बात करें तो ब्रॉडली कैसे बोलते हैं कि हमारा जो खाना है, जो बॉडी में जो जाता है, वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स, इन पांच चीजों के बारे में मेनली फोकस रहता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कार्बोहाइड्रेट्स खराब है क्योंकि उससे मोटापा होता है।
0: एग्जैक्टली
1: बट लोग ये नहीं समझते हैं कि जो हमारे कण, हमारे बॉडी में जो सेल्स है, हर एक सेल को जो ऊर्जा या एनर्जी का जो जरूरत है वो कार्बोहाइड्रेट से ही आता है। तो हमारा जो बॉडी का प्राइमरी एनर्जी सोर्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट खराब नहीं है, कार्बोहाइड्रेट हमें जरूरी है। हमारी बॉडी की जो एबिलिटी है या जो क्षमता है, वो जो भी खाना होता है उसको ब्रेक डाउन करता है, मतलब उसका जो ब्रेक डाउन होता है वो इवेंचुअली मतलब एट द एंड वो जाके कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज में ही होता है। क्योंकि बॉडी का जो अब्सॉर्प्शन है, जैसे मैंने बोला हर सेल को जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो ग्लूकोज होती है। तो कोई भी खाना जो खाते हैं जब ब्रेक डाउन होता है बॉडी के अंदर, तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होके सेल के अंदर जाके वो ऊर्जा पैदा करती है। तो वही ऊर्जा से हमें अपना सारा एक्टिविटीज जो काम है वो सब हम कर सकते हैं। तो कार्ब्स आर बैड, कि कार्ब्स खराब है, ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत गलत स्टेटमेंट है। कार्ब्स हमारा जरूरी है, हमारे लिए फ्यूल है, हमारे लिए एनर्जी सोर्स है। कार्ब्स जो सबसे एफिशिएंट मतलब जो सबसे ईजिली जो हमें बॉडी को मिल जाता है ना, तो वो कार्बोहाइड्रेट है। इसके लिए वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो बॉडी यूज करती है, जब अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं देते हैं तो नेक्स्ट जो होता है वो फैट होता है, जिसको बॉडी बर्न करती है।
0: अच्छा,
1: बट फैट में क्या है, जो कैलोरीज है, जैसे बहुत लोग समझते हैं ये टर्म कैलोरीज, राइट? तो कैलोरीज मतलब अगेन कैलोरी जब ब्रेक डाउन का मतलब होता है एनर्जी देना, ग्लूकोज देना। तो कार्ब्स में जो हर एक ग्राम पे एक कार्बोहाइड्रेट का वो 4 कैलोरीज आता है, बट वही चीज 1 ग्राम फैट का अपने को ऑलमोस्ट 9 कैलोरीज आता है। तो बॉडी का जो रिजर्व जो रहता है ना वो फैट होता है। अगर बॉडी कार्ब्स नहीं मिलता है, जो इजिली वो नहीं ले पाता है कार्बोहाइड्रेट्स, तो फिर वो फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये जो होल कॉन्सेप्ट है कि प्रोटीन जो है वो बहुत मेहनत के साथ बॉडी उसको ब्रेक डाउन कर पाता है। प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी अलग से रिक्वायरमेंट है। तो प्रोटीन बहुत इनएफिशिएंट मतलब बिल्कुल ही लास्ट, और कोई चारा ही नहीं है मेरे पास, अगर बॉडी को ऐसा लगता है तब जाके वो फिर प्रोटीन को यूज करता है एनर्जी के लिए। क्योंकि प्रोटीन ब्रेक डाउन करने के लिए, एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो इसके लिए फोकस हमारा होना चाहिए कि हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, ना कि, हाँ ये एक चीज है कि एक्स्ट्रा कैलोरीज किसी भी फॉर्म में हम लोग खाएं, एक्स्ट्रा जो बॉडी को जरूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा हो वो जाके फैट के जैसे स्टोर होता है।
0: अच्छा,
1: तो इसके लिए कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट्स को इक्वेट नहीं कर सकते, मतलब दोनों सेम नहीं है। कैलोरीज जो है वो जो खाना होता है वो कैसे ब्रेक डाउन होता है और उससे जो एनर्जी पैदा होती है उसको कैलोरीज में कन्वर्ट होता है, बट खाना जो खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट ऐसे करके अलग अलग पदार्थ होते हैं उसमें। और ये भी लोगों को लगता है कि राइस खाने से हम मोटा होते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, 100%. और आलू खाने से हम ठीक नहीं है क्योंकि आलू में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है। यू नो, ये भी बहुत सारा एक मिथ है, लोगों को लगता है कि ये गलत है, बट एक्चुअली देखा जाए तो कुदरत ने ना कभी भी खाने को एक, जैसे हमारा बॉडी भी जैसा है कि वो पूरा अलग अलग पार्ट से जुड़ा हुआ है, कोई एक ऐसा लिवर अलग से, हार्ट अलग से नहीं है, सब जॉइंट है। वैसे ही कुदरत ने भी खाने को, जैसे चावल हो गया या आलू हो गया, इसमें कार्बोहाइड्रेट तो है बट उसके साथ साथ और भी पौष्टिक पदार्थ है उसके अंदर, तो इसे ब्रेक डाउन करके कभी भी खाने को प्रोटीन फैट ऐसा देखना बहुत गलत हो जाता है। हमें ये फोकस रहना चाहिए न्यूट्रिशन के स्टैंड पॉइंट से कि भाई मैं कितना एक्सेस में खा रहा हूँ या खा रही हूँ, वो एक फोकस रहना चाहिए कि ज्यादा ना खाए, क्योंकि जैसे मैंने बोला एक्स्ट्रा जो भी आता है बॉडी के अंदर वो फैट में स्टोर होता है। तो ये ध्यान में रखे कि जो भी मैं खाऊं जितना कुदरती तरीके से खाऊं उतना अच्छा है मेरे लिए। इसलिए फ्रूट्स,
0: अच्छा
1: फ्रूट जो आता है वो एक्चुअली, फ्रूट देखा जाए तो मीठा रहता है टिपिकली जो है, जैसे सेब खा लिया तो सेब में फाइबर बहुत सारा है। सेब एक्चुअली फ्रूट जो है वो प्योर शुगर्स है, मतलब वो बहुत जल्दी ऐसा ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज के अंदर, बट उसके साथ जैसे मैंने बोला फाइबर है, तो फाइबर के साथ साथ बहुत सारे जो बाकी न्यूट्रिएंट्स या बाकी जो पौष्टिक पदार्थ है वो भी जुड़े हुए रहते हैं।
0: करेक्ट।
1: तो हम एप्पल ज्यादा नहीं खा सकते या कोई भी फ्रूट ना एक या दो खा सकते, उससे ज्यादा नहीं खा सकते। ओवर ईटिंग जो बोलते हैं ना हम, इन कुदरती पदार्थों से हम लोगों को ओवर ईटिंग होता नहीं है। ओवर ईटिंग होता है जब हम लोग मैनमेड कुछ निकाल देते हैं, कुछ चीजें इसमें से ऐड कर लेते हैं, तो उसके वजह से क्या है कि हमारा जो वायरिंग है,
0: अच्छा,
1: वो थोड़ा चेंज होके हमें लगता है कि हम ज्यादा खा लेते हैं। उस तरीके से हमारा कैलोरीज जो है वो बढ़ जाता है और हमें ये लगता है कि कार्बोहाइड्रेट्स खराब है, प्रोटीन खराब है, बट फोकस सिर्फ ये रहना चाहिए कि कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स ये सारे खाने में होता है। जैसे मैंने बोला आलू में भी प्रोटीन होता है, फैट भी होता है।
0: अच्छा,
1: राइस खराब नहीं है बट जिस तरीके का राइस खाते हैं हम लोग, इतना पॉलिश्ड, इतना वाइट, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रख के खाने को तोड़ के ना खाने, बट जैसा हमारा प्लेट होता है कि दाल हो गया, सब्जी हो गया, चावल हो गया, तो ये थोड़ा अच्छे से मात्रा में हम लोग बैलेंस डाइट जो बोलते हैं उस हिसाब से अगर हम लोग ऑलमोस्ट एवरी डे खाए, ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए या पैकेज फूड नहीं खाना चाहिए, बट वो सब जितना कम कर सकते उतना अच्छा है, बट नेचुरली जो खाना बनता है घर के अंदर, जो पौष्टिक मम्मियाँ या फिर दादियाँ जो घर पे बनाती है या हम खुद जो बनाते हैं, मतलब नॉट जस्ट वुमेन बट हाँ प्रैक्टिकली जो बहुत सारे आजकल मर्द भी खाना अच्छे से बनाते हैं, तो घर का खाना होल तरीके से, बैलेंस तरीके से, कि दिन में फल भी हो गया, वेजिटेबल्स भी हो गए, दाल चावल, यू नो, ऐसे नॉर्मल तरीके से अगर खाना रेगुलरली खाते रहे तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये ब्रेकडाउन जो हम लोग बात करते हैं इसका जरूरत नहीं पड़ता है।
0: करेक्ट। अभी काफी अच्छी तरह से आपने समझाया है, बट अभी कैसे हुआ है, जैसे आपने बताया कि अलग अलग टाइप के डाइट आए हैं और एक फैशन की तरह लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बट उसके साइड इफेक्ट्स उनको पता नहीं रहेंगे शायद, या फिर उतनी डीप स्टडी उन्होंने की नहीं होगी, बट इसको लेके, मतलब अभी जो फैशन या ट्रेंड चल रहे हैं अलग अलग डाइट के, उसको लेके कुछ साइड इफेक्ट्स भी उनको आगे चल के होंगे क्या?
1: डेफिनेटली। देखो, डाइट जो चीज है, वो वर्ड डाइट ही अगर देखा जाए कि लोगों को लगता है मैं डाइट करूंगा तो, या मैं डाइट करूंगी तो मेरा वेट लॉस होगा, लोग टिपिकली डाइट की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको कैलोरीज कम करना है, बट डाइट जो है वो एक महीना, दो महीना काम करता है। आप डाइट लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकते हैं। लाइफ लॉन्ग आप खाना खाते हैं, बट आप डाइटिंग लाइफ लॉन्ग करते हैं क्या? कभी नहीं कर पाते हैं,
0: नहीं हो पाता। करेक्ट।
1: That is why diets do not work. इसलिए हम कभी भी डाइट करके, ये जो टर्म है डाइट जो है वो एवरी डे होना चाहिए, मतलब हमारा जो खाना है रेगुलर वो डाइट होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि बदकिस्मती से ना डाइट को हमने एक ऐसा फैंसी वर्ड करके कर लिया है कि मैं ये डाइट कर रहा हूँ, मैं वो डाइट कर रही हूँ, मैं अलग अलग है, यू आर राइट, कि मतलब बहुत सारे तरीके के डाइट है। मैं भी बचपन से, जब मैं बड़ी हो रही थी उस टाइम पे हम ये जीएम डाइट और एटकिंस डाइट ये कुछ कुछ चलता था कि एक दिन सिर्फ ये खाना चाहिए, एक दिन वो सिर्फ वो खाना चाहिए। अब ये सब टेम्पररी है, डाइट्स डू नॉट वर्क पूरा, मतलब जिंदगी भर आप नहीं कर पाते हो। फोकस, जैसे मैंने पहले भी बोला था, फोकस हमारा यही होना चाहिए कि मैं डेली हर मील जो मेरा है वो कितना पौष्टिकता से भरा है, कि उसमें सारे जो मुझे न्यूट्रिएंट्स, मेरे बॉडी को जो कुदरती तौर से जो न्यूट्रिएंट्स का जरूरत है, जो पौष्टिकता की जरूरत है, वो मुझे मिल रहा है, ये फोकस रहना चाहिए। ना कि मैं ये डाइट करूं, क्योंकि बहुत सारे डाइट्स रिसर्च भी है कि लॉन्ग टर्म कुछ कुछ डाइट्स जैसे है उसमें डेफिशिएंसीज भी हो सकते हैं, फिर उसमें एक्सेस करने के वजह से, जैसे हाई फैट डाइट हो गया या लो कार्ब डाइट हो गया, यू नो हाई फैट डाइट में क्या है, लॉन्ग टर्म जैसे जाके एथरोस्क्लेरोसिस की, हार्ट के इश्यूज, बिकॉज फैट बहुत ज्यादा होता है बॉडी में। टेम्पररी इनिशियली जो है वो वेट लॉस होता है, बट एक टाइम के बाद रिसर्च आजकल निकलने लगा है कि हाई फैट डाइट्स लॉन्ग टर्म बेसिस पे कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, मतलब दिल की दौरे पड़ने का या एथरोस्क्लेरोसिस की, आर्टरीज में जाके क्लॉग होने का, फैट डिपॉजिट होने का, तो ये चांसेस ज्यादा है। तो लोग करते हैं डाइट्स, एक साल भी करते हैं, बट इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि बॉडी कहीं ना कहीं उसको छुपा के रखती है इन चीजों को। और हमारी बॉडी भी कैसा है ना, कि ये बहुत सहनशीलता है अपनी बॉडी में, वो इतना इजिली ब्रेक डाउन नहीं होता है, यू नो, हमारी बॉडी जो है वो कोशिश करते रहता है कि मैं सब चीजों को बर्दाश्त करते हुए आगे बढूं। और इसके लिए हमारी जो बीमारियां है वो बाद में प्रकट होती है, कि इनिशियली जैसे ही खाते हैं वैसे ही बीमारी नहीं होती है।
0: करेक्ट,
1: एक थोड़े टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद, कहीं ना कहीं छोटे छोटे छोटे छोटे होके फिर कुछ बड़ा बड़ा बीमारी जाके निकलता है, यू नो। तो डाइट्स कभी काम नहीं करता है। तो मेरे लोगों का यही कहना है, और मेरे प्रैक्टिस में भी मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि देखो मैं डाइट नहीं दूंगी आपको, आपका आज का जो खाना है, जो रोज आप खाते हो, उसको आप और सेहतमंद कैसे बना सकते हो। आप चावल खा रहे हो, दाल खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, जो भी खा रहे हो, बट उसी खाने की थाली को आप और सेहतमंद कैसे बना सकते हैं, ये हमारा फोकस होना चाहिए। ना कि अच्छा मैं लो फैट करूंगी या हाई फैट करूंगी, लो कार्ब करूंगी जिससे मेरा वेट लॉस होगा, या तो ऐसे बहुत सारे जो फैट डाइट्स जो बोलते हैं ना, कि इसमें मुझे तो विश्वास नहीं है। लोग करते हैं, लोगों को बेनिफिट होता है, डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में बेनिफिट होता ही है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से सस्टेनेबल नहीं है, मतलब जिंदगी भर आप नहीं कर पाओगे। दूसरा जो है, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होता है। तो बेस्ट मैं ये रेकमेंड करूंगी कि आपका जो रोजमर्रा का खाना है, तीन वक्त आप खा रहे हो, तो वो तीन वक्त का खाना जो है उसको आप ज्यादा पौष्टिकता कैसे बनाए, क्योंकि बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है वो पौष्टिकता है, पौष्टिक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका रिक्वायरमेंट है।
0: करेक्ट,
1: तो उसी पे फोकस हमारा होना चाहिए।
0: आज का जो टॉपिक है जनरल न्यूट्रिशन के बारे में, तो उसके लिए जो नॉर्मल लोग हैं जिनको किसी भी टाइप की बीमारी नहीं है, उन लोगों के लिए हम कैसे बताएं, कि जैसे अभी अभी आपने बोला कि उनकी थाली अच्छे कैसे हो जाए, उस पे मैं काम करती हूं, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या बोलना चाहेंगे?
1: गुड क्वेश्चन। और ये जो बहुत सारे स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स को भी जो फोकस नहीं रहता है, और ये एक वर्ड है फाइबर, जो फाइबर जो टर्म है ना, इसको क्या रेशा बोलते हैं। आप कोई भी पत्ते को आप फाड़ोगे तो एक स्ट्रिंग निकलता है एक ना, तो वो फाइबर होता है। कि आप एप्पल को जब चबाते हो तो वो जो बाइट एक होता है, एक जो आवाज आती है आपको क्रंच करके, वो फाइबर के जैसे है। तो ये जो है, ये हमारे खाने में मिसिंग है, जो रोजमर्रा का खाना है हमारा। क्योंकि जैसे मैंने बोला, राइस खराब नहीं है, व्हाइट राइस जिस तरह से हम लोग राइस को खाते हैं वो प्रॉब्लमेटिक है। तो उसके वजह से क्या है, क्योंकि हम चावल को या अनाज में से पूरा उसका जो फाइबर और पौष्टिक तत्व है वो सब निकाल के हम लोग खा रहे हैं, तो इसके वजह से चावल, आज का जो हम चावल खा रहे हैं वो खराब हो रहा है। सदियों से, मतलब आप देखा जाए जनरेशन एंड जनरेशन से, हमारा जो प्राइमरी खाना है वो चावल ही है। बट चावल के साथ साथ हम बहुत सारे और चीजें खाते थे, चावल हमारा इतना ज्यादा नहीं होता था। आज आप थाली में अगर किसी के भी देखो तो चावल ऑलमोस्ट 3/4 पोर्शन जो है वो चावल या बाकरी या रोटी या जो भी है, ज्वार हो, कुछ भी हो, ग्रेन हो जाता है, अन्न जो हो जाता है ना, तो वो ज्यादा होता है। और जो सब्जी हो गया, दाल हो गया, या कोई और भाजी हो गया, या जैसे यू नो ये स्प्राउट्स हो गए, ये सारी चीजें, चटनियां हो गई, तो ये सारी चीजें बिल्कुल तरकारी जो है थाली में ना, तरकारियां कम हो गई है। तो हमें सिर्फ ये फोकस लाना है कि जो पुरानी तरीके से जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या उनके पहले जैसे खाते थे, उस पे थोड़ा फोकस रखें कि ज्यादा तरकारी लाए, भाजी तरकारी जो है, साग के पत्ते जैसे हरी पत्तियां की, पालक हो गया, शेपू हो गया, मेथी हो गया, रोज एक ना कोई एक पत्ती किसी फॉर्म में, चटनी के फॉर्म में या रोटी के अंदर या फिर दाल में ऐसे मिला के खाओ। फिर एक फ्रूट तो एटलीस्ट एवरी डे, कोई भी फल जो सीजन में है वो कुछ ना डेली एक फ्रूट इंक्लूड करे, क्योंकि कुदरत जो ये कलर्स, कलरफुल जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं ना, इसमें बहुत पौष्टिक तत्व है।
0: अच्छा,
1: ये पौष्टिक तत्व के वजह से ही ये कलर्स आ रहे हैं। तो जो लाल है, हरा है, पीला है, हम अगर फोकस इन चीजों पे करें तो फिर हमें ऑटोमेटिकली ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। रोज जो थाली है, तीन वक्त का खाना जो हमारा है, अगर इन थोड़ा कलर्स पे फोकस करें, ये जो फाइबर जो मैंने वर्ड यूज किया ना, जो रेशा होता है खाने के अंदर, इस पे अगर हम फोकस करें ना, तो फिर हमारा ऑटोमेटिकली थाली जो है वो बेहतर होगा, हमारा जो सेहत है वो इम्प्रूव होगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पिछले 30-40 साल में मैंने नोटिस करा है कि हमारा जो खाने में फाइबर निकल गया है, सब कुछ हम लोग बहुत रिफाइंड तरीके से खा रहे हैं।
0: Exactly.
1: तो उसके वजह से क्या है कि बीमारियां भी बहुत ज्यादा रिफाइन होके आ रही है। पहले डायबिटीज बहुत कम लोगों में होती थी, अभी डायबिटीज इज वेरी वेरी कॉमन, ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड थर्ड पर्सन है यहाँ पे जो डायबिटीज है, मतलब यू नो दुनिया में इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। पॉपुलेशन में तो ज्यादा है ही है, तो पॉपुलेशन के साथ साथ बीमारी भी सबसे ज्यादा है।
0: Correct.
1: तो ये इसके लिए हुआ है, ना कि कार्बोहाइड्रेट की वजह से, बाकी फाइबर निकाल दिया गया है हमारे खाने से। तो जो रोजमर्रा का खाना है उसको सेहतमंद बनाने के लिए फोकस ये करें कि फैट भी कट डाउन होना चाहिए। जैसे मैंने बोला, फैट के वजह से एक्स्ट्रा कैलोरीज आते हैं बॉडी में, तो हमारा फैट भी जो है वो कंजम्पशन जो हम खाने में जो लाते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले क्या होता था कि तले हुए खाने जो है कभी कभार हम लोग करते थे, कि मौसम बदल गया हो, बारिश हो रही है, थोड़े पकोड़े खा लिया। आज क्या है, पकोड़े हम लोग स्नैक में हर रोज खाते हैं, पकोड़े समोसे चले, मतलब ये ना जो चलता ही रहता है। और दूसरा भी एक हमारे लाइफस्टाइल में क्या चेंज आ गया है कि बोर होता है तो हम लोग खाते हैं, कि और कुछ करने को नहीं है इसके लिए, चलो कुछ है खाते हैं, दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है खाते हैं। हम लोग ना वो पूरा जो शिफ्ट हो गया है खाने की तरफ, खाने को हम लोग एक कंफर्ट की तरह देखते हैं, ना कि ऊर्जा या एनर्जी देने वाली चीज। जो बॉडी को रिक्वायरमेंट है उससे बहुत ही ज्यादा हम लोग खाने पे फोकस दे रहे हैं। तो जहां हम लोग शायद दो वक्त का खाना खाते थे, एक मुहावरा होता है ना कि दो वक्त की रोटी मिल जाए तो बहुत है, तो वो एक्चुअली दो वक्त ही जरूरी है बॉडी के लिए।
0: पर अभी इतनी आसानी से सब कुछ मिल जाता है ना, तो लोगों को उतनी अहमियत नहीं रही है।
1: करेक्ट। तो खाना जो है, इंग्लिश में एक फ्रेज है जहाँ मैंने पढ़ा था कि हम लोग ओवर फेड है बट अंडर नरिश्ड है। अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूँ तो खाना बहुत है, जैसे आपने बोला हर जगह देखो खाना तो मिल ही जाता है, कुछ ना कुछ फॉर्म में मिल जाता है, बट जो बॉडी को जो नरिशमेंट है, जो पौष्टिकता मिलना है, वो नहीं मिल रही है। इसके लिए वी आर अंडर नरिश्ड, तभी हमको बीमारियां भी हो रही है, मोटापा भी हो रहा है, क्योंकि जो पौष्टिक तत्व चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, जो नहीं चाहिए वो मिल रहे हैं। जैसे एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं चाहिए अपने को, बट क्योंकि खाना इतना प्रोसेस्ड है तो एक्स्ट्रा कैलोरीज आ रहे हैं, और क्योंकि खाना इतना प्रोसेस्ड है जो बाकी के पौष्टिक तत्व जैसे विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, जो बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, वो नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हमें खाना ज्यादा है बट जो जरूरी है वो नहीं मिल रहा है, तो ओवरफेड बट अंडर नरिश्ड है, तो इसके लिए मोटापा, फिर बीमारियां एक के बाद एक, कुछ ना कुछ यू नो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो सिर्फ दो चीजों पे मैं फोकस करूंगी कि एक फ्रूट एवरी डे, कि भले ही आप स्नैक में खा रहे हो वो पकोड़ा समोसा खाने के बजाय, आप एक फ्रूट ले आओ। दूसरा जो है कि साग के जो पत्ते हैं, एक हरी सब्जी या दाल में, कोई भी फॉर्म, चटनी फॉर्म में या पराठे में, किसी भी फॉर्म में आप साग के पत्ते लाएं, और जो चावल या रोटी का जो क्वांटिटी है उसको थोड़ा कम करके तरकारी भाजी का जो क्वांटिटी है थोड़ा बढ़ा दे, और ऑटोमेटिकली अगर तेल को थोड़ा कम कर ले, रिफाइंड जो हम लोग तेल में जितना तले हुए पदार्थ, और फिर खाने में भी कितना ज्यादा तेल जो यूज होता है, तो वो प्योर फैट है, मतलब सिर्फ उसमें ना एक्स्ट्रा कैलोरीज है, तो हमें जरूरत नहीं है उतना, तो वो थोड़ा कम कर ले, तो ऑटोमेटिकली आप इसको हर मील में ये फोकस अगर लेके आएंगे ना, तो स्टेप बाय स्टेप, तो पहले एक मील से स्टार्ट करें कि चलो ब्रेकफास्ट मेरा मैं और हेल्दी कैसे बनाऊं, वही पोहा खाओ बट पोहे में एक चार वेजिटेबल्स डाल के खाओ, थोड़े स्प्राउट्स डाल के खाओ, अगर वही पराठा खा रहे हो तो पराठे में तेल कम कर लो या घी मत डालो या बहुत कम घी में बनाओ, अच्छे से थोड़ा फिलिंग ज़्यादा रखो। तो ये कुछ कुछ तरीके हैं जिससे हम जो डेली खाना है उसको हम सेहतमंद बना सकते हैं। तो ये फोकस एक वर्ड पे मैं बोलूंगी कि फाइबर, फाइबर पे अगर फोकस कर लो, जब भी खाना मुंह में जा रहा है इसमें फाइबर है क्या, ये अगर हमारे दिमाग में बैठ गया ना, तो फिर हम हर एवरी डे इज अ डाइट ओनली।
0: मेरे ख्याल से फाइबर की जगह अभी प्रोटीन ने ली है, क्योंकि हर कोई प्रोटीन के पीछे पड़ा है और इसका डायरेक्ट कनेक्शन वेट लॉस को आता है, क्योंकि खाना बोले तो वेट लॉस करना या फिर वेट लॉस करने के लिए जो ट्राई करते रहते हैं उनके दिमाग में ये सभी भरा पड़ा रहता है कि डाइट करे या फिर ये डाइट ले ले, इसमें ये रहना चाहिए, प्रोटीन ज्यादा लेना चाहिए, ये सभी बातें सोचते हैं। बट जो हमारे अगर पेरेंट्स के बारे में अगर हम बात करें, तो जो पौष्टिक अन्न जो खाया जाता है रोज का, जैसे आपने प्लेट के बारे में बताया, तो वो सभी उनके जमाने से मतलब खाते आ रहे थे और वो चाहते थे कि बच्चे भी वही खाए, बट अभी हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं तो हो नहीं पाता, बट अभी फिर से हमें पीछे जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है
1: थोड़ा एक लेवल पे। देखो हम हमारे परदादे के टाइम पे या दादा दादी के टाइम का लाइफस्टाइल नहीं है हमारा, वो भी एक प्रॉब्लम है ना। तो उनका 80% खाने जैसा उनका था, अगर हम अपने में 80% भी लाए ना, जरूरी नहीं है कि 100% उनके जैसे खाना जरूरी है, हमें ऑब्वियसली जो बाकी जो चीजें है जो बन रही है जो बिक रही है वो, और उनके भी बिजनेसेस जो है थोड़ा बढ़ावा देंगे हम, बट हमारे सेहत से ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज नहीं है, कि अगर हमारे सेहत बनी रहे तो फिर बाकी सब कुछ 100% अच्छा रहेगा, राइट?
0: करेक्ट।
1: तो इसके लिए तभी मैंने बोला ना, एक मील, आप कोई एक मील कि जो भी आपका सबसे इजीएस्ट हो आपके लिए, कि अगर लंच आपका आपको लगता है कि अभी बहुत अनहेल्दी हो रहा है, मैं ब्रेकफास्ट तो हेल्दी खाता हूँ कि डिनर मेरा लाइट ही रहता है, एक और भी कहावत है ना कि आप ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ नॉर्मल मैन और डिनर लाइक अ पॉपर बोलते हैं, कि मतलब सबसे जो हल्का खाना होता है वो रात का खाना होना चाहिए। और हमारे स्क्रिप्चर्स में भी या पुरानी आदतें भी ऐसी है कि सनसेट से पहले खाने का जो है, आजकल उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे बोलते हैं ना, कि आप 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे आप फास्ट करो, तो वो बहुत पौराणिक टाइम से हमारे स्क्रिप्चर्स में भी बोला गया है, और जैसे अलग अलग रिलीजन्स में भी ये प्रैक्टिस है कि सूर्यास्त के बाद खाना नहीं चाहिए, बट हम लोग रात के 12 बजे भी खाते हैं क्योंकि है अवेलेबल है, तो ये थोड़े प्रैक्टिसेस, मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, कि कभी कभार कर लिया ठीक है, बट जो 80% ऑफ द टाइम आप जो हैबिट जो बिल्ड कर रहे हैं ना, उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, कि हर वक्त का मेरा जो खाना है अगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके मैं हेल्दी बनाती रहूं, तो फिर 80% ऑफ द टाइम मेरा हेल्थ अच्छा ही रहता है, एक 10-20% इधर उधर 19-20 होता है, बट फोकस यही होना चाहिए कि ज्यादा ना खाए, भूख लगे तब खाए, हम लोग जैसे मैंने बोला ना, आते जाते हम लोग खाते रहते हैं, ये ना करें, मतलब गाय भैंस चरते हैं ऐसा, चरते रहते हैं और हम भी वैसे ही चर रहे हैं ना, कि आते जाते खाते, बोलना नहीं चाहिए बट यही आदतें हैं, दीज आर हैबिट्स जो बोलते हैं, यही हैबिट को हमें तोड़ना है, थोड़ा बहुत ब्रेक लेके कि भाई अच्छा ठीक है लंच हो गया, उसके बाद जरूरी नहीं है कि स्नैक खाए, चाय के साथ समोसे बिस्किट, ये नहीं जरूरी है, बट आदत हो गई है तो वो आदत ना, थोड़ा हेल्दी कैसे बनाए, एक फ्रूट ले आओ उस टाइम पे, तो चाय के साथ फ्रूट बहुत लोग नहीं खा पाते हैं, बट ठीक है तो चाय थोड़ा कम कर लो, फ्रूट ऐड कर लो, तो यू नो थोड़े बहुत ये जो हैबिट्स है चेंजेस धीरे धीरे करके बिल्ड करेंगे ना, तो एक हैबिट बन जाएगा। तो फोकस यही होना चाहिए कि हेल्दी हैबिट कैसे हम बिल्ड करें, हर बार जैसे मैंने बोला हर बार खाना मुंह में रखते हैं सोचो कि ये फाइबर है, इसमें पौष्टिकता है, ये एक थॉट से अगर खाना खाए ना, दूसरा जो न्यूट्रिशन के स्टैंड पॉइंट से बहुत सारे मैंने भी पढ़ा नहीं है, ये मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है और अब जाके बहुत सारा रिसर्च आ रहा है कि हम जिस तरह से खाते हैं सोचते नहीं है खाते टाइम, हम लोग डिस्ट्रैक्टेड है कि मतलब वहां टीवी चल रहा है या मोबाइल पे कुछ चल रहा है और हम लोग खाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारा बाकी चीजें जो है डिस्ट्रैक्शंस हो गए हैं और खाने पे फोकस निकल गया है। तो माइंडफुल ईटिंग जो है ना उससे भी बॉडी में बहुत फर्क पड़ता है। तो जैसे आपने बोला मैं होलिस्टिक लेवल पे काम करती हूँ कि माइंड बॉडी कनेक्शन जो है वो बहुत पावरफुल है, तो खाना तो एक चीज है जो मेन फोकस रहता है, बट किस तरीके से खाते हैं, कितना चबा के खाते हैं। अक्षय कुमार बोलता है वो हर एक निवाला जो है वो 32 बार या 34 बार कुछ चबाता है, वो उतना सोचने का जरूरत नहीं है हमें, बट जो खाते हैं उसको थोड़ा अच्छे से चबा के खाए, क्योंकि डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ मुंह से स्टार्ट होता है।
0: अच्छा,
1: इट डजंट डायरेक्ट, खाना इधर जाके पचता नहीं है, पचता है इवेंचुअली यहीं पे, बट जो प्रोसेस जो स्टार्ट होता है ना वो अपने जैसे ही हम खाना मुंह में रखते हैं वहां से स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए चबाना बहुत जरूरी है कि जितना ज्यादा चबाएंगे उतना ऑटोमेटिकली हमारा जो खाने का क्वांटिटी है वो कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी को अब्सॉर्प्शन जो पौष्टिक पदार्थ चाहिए वो अच्छे से वो अब्सॉर्ब कर सकता है। तो वो चबाने का, बचपन में मम्मिया बोलती थी ना या दादी बोलते थे चबा चबा के खाओ अच्छे से, मेन रीजन ये है कि जो हमें न्यूट्रिशन चाहिए जो पौष्टिक पदार्थ चाहिए वो अच्छे से अब्सॉर्ब होता है, असिमिलेट होता है। तो इसके वजह से ध्यान से खाओ कि खाते टाइम भले ही 10 मिनट के लिए खा रहे हो आप, आधा घंटा खाने की जरूरत नहीं है, वो 10 मिनट जो है सिर्फ खाने पे फोकस रखो कि भाई मैं खाना, और वो भी एक होता है कि आप रिस्पेक्ट भी दे रहे हो खाने को, तो जब आप रिस्पेक्ट दे रहे हो खाने को उसको फोकस में रख के खा रहे हो ना, तो आप अपने बॉडी को रिस्पेक्ट कर रहे हो कि भाई मेरे बॉडी के लिए ये, क्योंकि यही जो चीज है जो मुझे अब आज बैठ के बात कर रही हूँ या जो भी है मेरा सेहत है, तो ये इसके वजह से ही हो रहा है, तो इसको वो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। और वो जो एक माइंडफुलनेस जो बोलते हैं ना वर्ड, बहुत लोगों ने सुना होगा माइंडफुलनेस, तो इस माइंडफुलनेस के साथ खाने से थोड़ा उससे भी बॉडी में फर्क आता है जिस तरह के अब्सॉर्प्शन होता है पौष्टिक आहार का जो है।
0: करेक्ट मैम, अभी तक हमारे प्लेट में क्या क्या खाना आता है वो कैसे रहना चाहिए उसके ऊपर बात कर रहे हैं, बट प्लेट में आने से पहले वो जहाँ से आता है उनके लिए भी काफी कुछ बदलाव करने चाहिए तभी वो हमें अच्छा मिलेगा, वो भी एक पॉइंट है, तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो वहां तक हम जाना मतलब वो अलग ही टॉपिक हो जाता है, बट फिर भी जो खाना हम घर पे लेके आते हैं मतलब रॉ मटेरियल लेके आते हैं उसको ज्यादातर पौष्टिकता में कैसे कन्वर्ट करें उसके बारे में क्या बोलेंगे?
1: तो यू आर राइट, आजकल बहुत ज्यादा जो है हमें आइडिया भी नहीं है कि हमारा खाना किधर से आता है। पहले क्या हम मार्केट जाते थे ऑलमोस्ट हर दिन या हर दो दिन में फल सब्जी लेके आते थे, ये रोज का एक एक्टिविटी होता था। इससे भी क्या है यू नो, एक एक्सरसाइज जैसा हो गया कि हम मार्केट तक जाए लेके आए। मुझे भी याद है मैं बचपन में अपने डैडी के साथ मार्केट एक ही बाजार लगता था और वो बाजार में जाके उस हफ्ते का जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स जो भी चाहिए वो लेके आने का। बट अभी तो हम लोगों को मिलता है कि न्यूजीलैंड से कुछ कुछ मिल जाता है, चिली से एप्पल्स मिल जाते हैं, कहीं और से कुछ और मिल जाता है। तो पर्सनली मैं तो ज्यादा लोगों को बोलती हूँ कि जो लोकली ग्रो होता है कि जो, और सीजन कि जैसे आम का एक सीजन होता है, कुदरत ने आम को एक सीजन में इसके लिए बनाया है क्योंकि वो सीजन में हमारे लिए अच्छा है। वो सेब जो है वो ठंड के रीजन में ही ग्रो करता है और वो ठंड के मौसम में मिलता है क्योंकि वो उस मौसम के लिए अच्छा है। अब सेब हमें थ्रू आउट द ईयर मिलता है, हम कभी भी खा सकते हैं, बट उसको बॉडी में कैसे, अभी मैं तो बैठ के साइंटिस्ट नहीं हूं कि मैं बैठ के रिसर्च करूं कि मेरे बॉडी के अंदर समर में सेब खाने से क्या होता है, ये मुझे आइडिया नहीं है। बट मेरा ये मानना है और एंड रिसर्च है कि लोकल जितना आप खाओ, कि जो सीजन में ग्रो कर रहा है जितना आप खाओ, और इतना ज्यादा है, वैसे तो बोलते हैं कि केमिकल फ्री खाना जितना खाओ उतना अच्छा है, बट केमिकल फ्री खाना मेरे लिए सेकेंडरी हो जाता है। प्राइमरी जो होता है जैसे मैंने बोला कि जो कुदरत देता है उसको उस तरीके से खाने का। तो केमिकल फ्री ना हो तो भी इतना इंश्योर करो आप कि आपको जो लोकल और सीजन जो मिल रहा है, कि जैसे आम समर में ही खाओ, ना कि आम अभी भी मिलता है कहीं ना कहीं, आप जाओ पाकिस्तान से आम आते हैं, मलेशिया से आम आते हैं तो खरीद सकते हैं, बट ये सीजन नहीं है हमारे लिए खाने का, तो वो सीजन अनसीजनल जो है, जो सीजन में नहीं है वो चीजें मत खाओ। अगर आप केमिकल फ्री खा सकते हो तो खाइए, बट जरूरी नहीं है कि उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना आप लोकल और जो रीजनल और सीजनल खाना है, इससे क्या होता है, जैसे आपने बोला जहाँ ग्रो कर रहा है, जो फार्मर उगा रहा है, जो किसान मेहनत कर रहा है, लोकली खाने से उसको भी बेनिफिट होता है कि हम यहाँ की जो उपजाऊ जमीन में, यहाँ की जो उगाव है, उस चीज को खाने से यहाँ के किसान को बेनिफिट होता है। और जितना मैं पर्सनली ये बिलीव करती हूँ कि जितना आप मार्केट में जाके फ्रेश लेके आओ और फ्रेश बना के खाओ उतना अच्छा है, बट लोगों के पास टाइम नहीं है। सबके पास बहुत कन्वीनियंस जो एक चीज हो गया ना कि कभी भी कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, पैकेट से उठा के कभी भी कुछ भी बना के खा सकते हैं, ये चीजें थोड़ा कम करके फ्रेश थोड़ा बना, भले ही बना के रख लो बट जितना हो सकता है घर पे बना हुआ खाना खाए। और जो लोकल और रीजनल जो खाना है कि इंडिया में जो मिलता है वो ठीक है, मतलब जैसे सेब यहाँ पे तो ग्रो नहीं करता है, वो आते हैं हिमाचल जम्मू से, तो वो ठीक है, पर जरूरी नहीं है कि समर में हम जाके कहीं और से कुछ कीवी लेके आए कि विटामिन सी के लिए कीवी खाना है।

0: मिलेट्स जिसको 2023 इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ऑल्सो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस ने इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, तो ग्लोबली यू नो हर जगह मिलेट्स पे फोकस आ रहा है. तो अगर हम थोड़ा हमारे खाने में भी डेली बेसिस पे थोड़ा मिलेट्स अगर इंक्लूड करें, राइस को थोड़ा शिफ्ट करके मिलेट्स ले आए वापस से, मतलब पुराने तरीके से खाने लगे, तो वो भी सेहतमंद बहुत रहेगा.
1: आज का जो हमारा टॉपिक था वो बहुत ही यूजफुल होगा हमारे लिसनर के लिए, और उसमें हमें भी काफी नॉलेज मिला, और इस टॉपिक पे बात करने के लिए आपने समय निकाला उसके लिए थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू मनीषा, इट वाज रियली नाइस, बहुत अच्छा लगा.
1: थैंक यू मैम. दोस्तों अभी तक हम सुप्रजा यस जी को सुन रहे थे जो एक न्यूट्रिशनिस्ट है. जनरल न्यूट्रिशन के बारे में उन्होंने हमें काफ़ी कुछ जानकारी दे दी है जो हमें डेली रूटीन में हमें बहुत ही यूजफुल होने वाली है. कैसा था आज का एपिसोड मुझे ज़रूर बताइएगा. उसके लिए नंबर है 9019904904. ये है केली वेणुधोनी 90.4 FM की प्रस्तुति. नमस्कार. बेळगाव मधील केली बीएम कंकणवाडी आयुर्वेदा हॉस्पिटल आरोग्य क्षेत्रामध्ये उत्कृष्ट सेवा देत आहे. तुमच्या रोगाचं योग्य निदान करून आवश्यक असणारे सर्व उपचार तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून दिले जातील. केली बीएम कंकणवाडी आयुर्वेदा हॉस्पिटलचा मुख्य उद्देश रोगाचं निदान करणं आणि योग्य उपचार करणं, तुमच्या आरोग्याची काळजी घेणं हेच आमचे ध्येय. तुमच्या आरोग्याच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी आयुर्वेदिक उपचार घेण्यासाठी संपर्क करा केली बीएम कंकणवाडी आयुर्वेदा हॉस्पिटल आणि महाविद्यालय शहापूर बेळगाव. फोन नंबर 0831 2486286.

गुड इवनिंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप सभी के पसंदीदा शो बी रिलैक्स में। और आप सभी ने ट्यून किया है बेलगम का सबसे बड़ा और सबसे पहला रेडियो स्टेशन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु। और मैं हूँ आप सभी का प्यारा दुलारा हैंडसम आरजे दोस्त आयुष। स्वागत करता हूं आपका इस अनोखी शाम में जहां हम डिस्कस करने वाले हैं आज एक ऐसी चीज के बारे में जो बीमारियों से भी कई ज्यादा फैल रही है। बच्चों से लेकर बड़ों तक यानी हर एज के लोग इनके पीछे थोड़े से दीवाने हुए जा रहे हैं, और वो क्या है, वो है इंस्टाग्राम ट्रेंड्स। जी हाँ, फिर चाहे वो कच्चा बादाम हो या फिर लौंग द लश्कारा, स्टोरी से लेकर हैशटैग तक, मतलब लोग अपनी जी जान लगा देते हैं कंटेंट या ट्रेंड को फॉलो करने के लिए। तो तैयार हो जाइए, आज हम करने वाले हैं इसी कैची टॉपिक पर बात। सो सिट बैक एंड रिलैक्स एंड एंजॉय द शो ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु पर।

0: Hello and welcome back one more time to our show Be Relax and you have tuned in to Venu Dhwani 90.4 KLE Kanasu. और हम आज बात कर रहे हैं जो आप सभी को अपने इशारों पर नचाने के लिए मजबूर कर देते हैं उन्हीं Instagram ट्रेंड्स के बारे में. दोस्तों Instagram जो कि एक पॉपुलर वीडियो एंड फोटो शेयरिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, nowadays it has become the hot bed of trends that shape the digital landscape and influence modern culture. जहां billions of monthly users available हैं. Also it serves a dynamic space for a creative कम्युनिकेशन और सेल्फ एक्सप्रेशन. वायरल चैलेंजेस से लेकर एस्थेटिक थीम्स तक इस एवर रिवॉल्विंग इंस्टाग्राम ट्रेंड्स ने सबका अटेंशन खींच कर रखा है ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड रीडिफाइनिंग हाउ द कंटेंट इज शेयर्ड एंड कंज्यूम. तो चलिए आपको भी कुछ एंटरटेनिंग कंटेंट देते हैं, यानी सुनाते हैं आपको कुछ बहुत ही सुपरहिट सॉन्ग्स. तो बने रहिए हमारे साथ हमारे शो बी रिलैक्स पर ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु.
1: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI powered पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा.

स्वागत है आपका एक बार फिर और आप सुन रहे हैं हमारा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेनु ध्वनी 90.4 केएलई कनसु और जे आयुष के साथ। दोस्तों, इंस्टाग्राम का सबसे प्रोमिनेंट एस्पेक्ट है उसका चैलेंजिंग कल्चर। ये चैलेंजेस वो वायरल ट्रेंड्स होते हैं जिसमें यूजर्स उकसाते हैं दूसरे यूजर्स को इनमें पार्टिसिपेट करने के लिए इन देयर ओन कंटेंट बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक थीम्स और एनी टास्क। अब वो डांस भी हो सकता है या लिप सिंकिंग हो सकती है और एनी क्रिएटिव चैलेंज वो भी हो सकता है। तो कोई भी चैलेंज हो सकता है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये सारे ट्रेंड्स वाइल्ड फायर की तरह फटाफट हर जगह फैलते जा रहे हैं। चैलेंजेस और भी ज्यादा स्प्रेड और अट्रैक्टेड होते हैं उनके हैशटैग्स की वजह से, जिससे लोग इनकरेज होते हैं और अपना यूनिक टैलेंट ट्रेंड के रूप में पोस्ट करते हैं। और अगर बात चल रही है इंस्टाग्राम ट्रेंड्स की, तो सुनाएंगे आपको इसी तरह के कुछ ट्रेंडी सॉन्ग्स ओनली ऑन वेनु धोनी 90.4 के एलई कनसु। तो कहीं जाइए।

दोस्तों एस्थेटिक थीम्स अनदर सिग्निफिकेंट आर्ट ऑफ इंस्टाग्राम ट्रेंड्स, जिसमें यूजर्स चाहते हैं कि उनकी फीड एक स्पेसिफिक विजुअल्स और वाइब में रिफ्लेक्ट करे, जिससे उनकी प्रोफाइल और भी अट्रैक्टिव लगने लगती है और थोड़ी सी आई कैची लगने लगती है। कुछ थीम्स के नाम मैं आपको बताता हूं, जैसे विंटेज थीम्स या पेस्टल पैराडाइज। आई नो थोड़े से फैंसी नेम्स है, बट ऐसी थीम्स होती है। इन्हीं थीम्स की हेल्प से यूजर्स अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं और ऐसे ही ट्रेंड्स की वजह से इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स बढ़ रहे हैं, जिनके आर्ट फॉर्म्स और कंटेंट मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंच रहे हैं और इसी के कारण वो इतने ज्यादा फॉलोअर्स भी अट्रैक्ट कर पाते हैं और उन्हें ब्रांड कोलैबोरेशंस की अपॉर्चुनिटीज मिलती है इन्हीं कंटेंट शेयरिंग की वजह से। तो एक तरीके से इंस्टाग्राम ट्रेंड्स एक बेनिफिट भी है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। उम्मीद है दोस्तों

0: Hello and welcome back one more time and you are listening to Venu Dhwani 90.4 KLE Kanasu. हाल ही में Instagram ने कई storytelling themes भी witness किए, जिसमें users Instagram stories के द्वारा temporary content share कर सकते हैं, जो कि almost 24 hours में disappear हो जाती है. This feature has given the rises in trends like day in the life or behind the scenes and in interactive polls जो आप देखते हैं, जिसमें आपको कोई भी questions पूछ सकते हैं, which create the deeper connection with the audience. मुझे पता है आप लोग इनमें से कई सारे ट्रेंड्स जरूर फॉलो करते ही होंगे और स्टोरीज के थ्रू अपने दिन की कोई भी एक गतिविधि या कोई भी सिचुएशन लोगों को जरूर बताते हैं या पोस्ट करते हैं. चलिए सुनाते हैं आपको कुछ जबरदस्त सॉन्ग्स, तो बने रहिए वेनु ध्वनि 90.4 केएलई कनसु पर.
1: नॉट साल्सा नॉट फ्लेमेंको माय ब्रदर,
2: डू यू नो देसी नाच?
3: व्हाट्स देसी नाच?

0: हेलो हेलो वेलकम वेलकम वेलकम एंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे शो बी रिलैक्स में। और आप सुन रहे हैं वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु आरजे आयुष के साथ। दोस्तों, जहां पोस्ट स्टोरीज और शेयरिंग की बात आती है वहां हैशटैग का जिक्र जरूर होता है क्योंकि दे प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन बूस्टिंग द कंटेंट। कुछ हैशटैग्स चैलेंजेस भी कई पॉपुलर हो रहे हैं इंस्टाग्राम पर। सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज फाइंड देयर वे इनटू द प्लेटफॉर्म्स ट्रेंड विच इज राइजिंग अवेयरनेस एंड इनकरेज meaningful conversations. Users use hashtag and share powerful stories and personal experience to advocate the challenge and support on a various issues. जिसे Instagram social impact के लिए भी platform बनते जा रहा है। And चलिए, it's time for some super hit songs. So stay tuned to Venu Dhwani 90.4 KLE Kanasu.
1: Sarigama Karma, the perfect gift for your loved ones.

0: there is an emergency. A patient is very serious. Accident हुआ है. काफी blood loss.
1: Doctor Ujjav को heel attend it. मुझे जरा घर जाना पड़ेगा.
0: Sir, there is an emergency case of Mehr Garewal. Accident है.
1: क्या नाम बता?
0: Mehr Garewal.
1: मुझे ले चलो.
0: Come.

0: फिलहाल तो यूं है कि कुछ कर नहीं सकते, तेरे बिन ही मरना होगा, साथ मर नहीं सकते। सूखे से पत्ते हैं एक टहनी पे लगे, किस्मत तो देखो कि झड़ नहीं सकते। फिलहाल तो यूं है कि कुछ कर नहीं सकते।
1: दोस्तों आखिर में देखा जाए तो इंस्टाग्राम ट्रेंड्स एक डिफाइनिंग एस्पेक्ट बन चुके हैं परफॉर्मेंस कल्चर के एंड शेपिंग द वे हाउ यूजर्स इंटरैक्ट, क्रिएट एंड कम्युनिकेट। चैलेंजेस जैसे एस्थेटिक थीम्स, स्टोरी टेलिंग या सभी ट्रेंड्स के डाइवर्स नेचर्स में अपना अपना पार्ट कंट्रीब्यूट करते जा रहे हैं, जिससे लोग और भी करीब आ रहे हैं और क्रिएटिविटी को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं और सोशल इश्यूज पर भी फोकस हो रहा है। बट हमें एक चीज याद रखना है कि कोई भी कंटेंट शेयर करने से पहले आप उसको थोड़ा सा देख ले, थोड़ा सा समझ ले कि क्या ये कंटेंट डालने से कोई नेगेटिविटी ना फैले या कोई भी ऐसा माहौल ना फैले जिससे आपको और दूसरों को तकलीफ हो। जैसे जैसे इंस्टाग्राम बढ़ रहा है वैसे वैसे ट्रेंड्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो आप बताइए, क्या आप भी ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं? ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आप भी उसका हिस्सा बन चुके हैं और आप भी इंस्टाग्राम ट्रेंड्स फॉलो जरूर करते हैं। तो चलिए उठिए और बनाइए कोई ऐसा ट्रेंड जो हमारे समाज में या वर्ल्ड में एक पॉजिटिव चेंज ला सके। और हम लेंगे आपसे विदा, जल्द मिलेंगे एक और एपिसोड के साथ। तो सुनते रहिए हमारा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु, आरजे आयुष के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए आपकी यादों को

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

सोनी 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरू थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुन और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

0: नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।
1: यादों की

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 के LE कनसूबे आप ट्यूने यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

ओनली 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यूने यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।